0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
5: Surah Al-Duha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Duha. Wal-Layl idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalam. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk।

समीन करम, बज़्म-ए-नात का मोहब्बतों और अकीदतों का सफ़र जारी है। कभी अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो दिल की कैफियत बन जाते हैं, दुआ बन जाते हैं। और कभी इंसान अपने रब से ये इल्तिजा करता है कि ऐ मेरे मौला, मेरी ज़ुबान को वो बात अता कर जो तेरे हुजूर पसंदीदा हो। कितनी खूबसूरत इब्तिदा है, मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ व बयां में ज़ाहिर हो, इसी शुगस्ता और पिस्ता ज़ुबान में ज़ाहिर हो। समीने कराम, यहाँ शायर अपने फ़न पर नाज नहीं करता, बल्कि अपनी ज़ुबान की कम मायगी का एतराफ़ करके रब की अता का तलबगार है। आइए हम भी इस कलाम को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इस दुआ को अपने दिल की दुआ बनाएं कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को सच, खैर, जिक्र और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल फरमाए। या अल्लाह, हमारे अल्फाज में खैर पैदा फरमा, हमारी ज़ुबान को गीबत, झूठ और दिल आज़ारी से महफूज फरमा, और हमारे दिलों को अपने ज़िक्र और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद फरमा। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता और बिस्ता ज़ुबां में ज़ाहिर हो। ज़माना देखे मेरे हरफ़ बाज़ियाब के रंग, गुले मुराद हुनर दश्ते जाम में ज़ाहिर हो। मैं सहर और नजरा कलाम हूँ के सकूत, तेरी अता मेरे नाम व नशा में ज़ाहिर हो। मज़ा तो तब है जब अहले यकीन कसर कमाल, मलामत सुहोने गुमराह में ज़ाहिर हो। गुज़श्तगान मोहब्बत का ख़्वाब गम गुश्ता, अजब नहीं कि शब आइंदगा में ज़ाहिर हो। पसे इजाब है एक शाहसवार वादी नूर, किसे खबर इसी अहद ज़यां में ज़ाहिर हो। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शुगस्ता उबिस्ता ज़ुबां में ज़ाहिर हो। प्यारे समीन, क्या खूबसूरत एहसास है अपने लफ्ज़ों को भी अता समझना और अपनी ज़ुबान को भी अमानत जानना। आखिर में शायर एक ऐसे शाहसवार वादी नूर का ज़िक्र करता है कि जो पर्दा हिजाब में है, और सवाल छोड़ जाता है कि कौन जानता है, शायद इसी दौरे ज़यां में उसी उस नूर का ज़हूर हो। यह कलाम हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है कि हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज, हमारी सोच और हमारा अमल किस सिमत जा रहा है। या अल्लाह, हमारे लफ्ज़ों को खैर का ज़रिया बना, हमारे कलम को हक और सच का तर्जुमान बना, हमारे दिलों में यकीन की रोशनी पैदा फरमा, और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर कायम रख, और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुन्नत और अदब पर इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान से निकलने वाली हर अच्छी बात को कबूल फरमा, और इसे किसी के लिए हदायत, सुकून या खुशी का ज़रिया बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। समीने कराम, एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ बाँटने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का दिल कभी दुखाना नहीं। सामीन कराम, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमारे अल्फाज, हमारा रवैया और हमारा बर्ताव किसी के दिल पर गहरा असर छोड़ सकता है। कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी की आंख नम न हो, किसी का दिल न टूटे और किसी को हमारी ज़ुबान या अमल से तकलीफ़ न पहुँचे। या अल्लाह, हमें नरम दिल अता फरमा, दूसरों के हकूक़ अदा करने की तौफीक दे, किसी की दिल आज़ारी से बचा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ करीमाना पर चलने वाला बना दे। आइए मोहब्बत बाँटें, माफ़ करना सीखें और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें।

कौम ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर ये हुक्म उठा लिया और उनका असलह उनसे गिर पड़ा। जो बछड़ा बनाया गया था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसको रेजा रेजा करूँगा, फिर उसको जला दूंगा और फिर उसको पानी में बहा दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले चमक होती है और उसके बाद गरज होती है और फिर वो गिरती है। तो यहाँ क्या देख रहे थे तुम? बिजली का चमकना और फिर उसके बाद कड़की और गिरी और वो सारे मर गए। वह अंतुम तंजुरून। बाज रिवायात में यह भी आता है, बाज लोगों ने इसकी ये भी तफसीर की है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की मुलाकात के लिए गए तो वापस आए किताब लेके, तो कौम ने कहा हम भी सुनना चाहते हैं आपने अल्लाह से कैसे बात की, हमें भी साथ ले चलें। 70 लोगों को चुना, कोहितूर पे ले गए, वहाँ जा कर लगे नहीं नहीं हमें तो अल्लाह को देखना है। उस पर इनकी शामत आई। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि नाजायज़ मुतालबात पैगम्बर से और अल्लाह से बसा औकात इंसान को मुसीबत में मुबतला करते हैं। तो पीछे हम पढ़ रहे थे ना कि इंसान पर मुसीबतें क्यों आती हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से। तो ये इस तरह के जो सवाल और मुतालबे थे ये मुसीबत का बायस बने। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि ऐ रब ये क्या बनेगा। सूरत अल आराफ 155 में आता है, ऐ अल्लाह अगर तेरी ये मशीयत थी तो आज से पहले मुझे भी और इन्हें भी हलाक कर देता। क्या आज तू इन नादान लोगों की बातों पर हमें हलाक करता है, यानी तू हमें ना हलाक कर इनको उठा दे। सुम्मा बासना को मिम्बा दिमौतिकुम, ये कितना बड़ा इनाम है कि हमने तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा उठाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये नींद नहीं थी उनकी या बेहोशी नहीं थी, वो वाकई मर गए थे। मौत मौत ही के लिए आता है, मौत नींद के लिए नहीं आता। और ये सब किस लिए नेमत याद कराई जा रही है? ताकि तुम शुक्र अदा करो। इससे ये पता चलता है कि इंसान अगर किसी ऐसी बीमारी या आफत या हादसे या मुसीबत से निकले तो उसे क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। वज़ल्लना अलैकुमुल ग़मामा, और साया किया हमने तुम पर बादलों का। ग़माम इस्म जिन्स है, एक बादल नहीं कई बादल, क्योंकि एक बादल का साया नहीं होता। वअंज़ल्ना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। मन और सलवा ग़िज़ा के तौर पर। ये कहाँ उतारा? सहराए सीना में। अब समझ में आ रहा है ना कि जब फिरौन से निकलकर वो दश्त सीना में गए तो वहाँ कुछ खाने को नहीं था, कई हज़ार लोग थे, ना वहाँ कुछ उगता था, ना ही वहाँ पानी था, ना कोई मकान थे। एक नहीं दो नहीं 70,000 लोग किसी मैदान में पहुँच जाएँ तो वो क्या करेंगे? तो उस पर अल्लाह ने इन पर बहुत इनाम और एहसान किया, और वो क्या था कि उन पर बादलों का साया किया और मन व सलवा खाने को दिया। और क्या फरमाया? कुलू खाओ, मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुमको रिस्क दी हैं, अच्छी चीज़ें, उम्दा चीज़ें। क्या थी ये अच्छी चीज़ें? मन और सलवा, जो देखने में टेस्ट में जायके में अच्छा था। वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पे जुल्म नहीं किया। किसने? बनी इसराइल ने। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। किस तरह? कैसे? शुक्र ना करके, ना शुक्री करके। इस आयत से भी क्या पता चलता है कि अल्लाह चाहे तो सहरा में बादल भेज के साया कर दे, यानी जब अल्लाह किसी पर इनाम करना चाहता है तो वो ऐसी जगह भी उसकी मदद करता है जहां बज़ाहिर कोई असबाब और वसाइल ना हो। जितने भी एहसान बनी इसराइल पे, इन सब में आप एक ही बात देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला इनकी ऐसे तरीक़ों से मदद करता है कि जो आम असबाब के तरीके नहीं हैं। वह अनजलना अलैकुम अलमन्ना वस्सलवा, आसमान से ग़िज़ा बराह रास्त आ रही है, पकी पकाई आसमान से मन्ना सलवा उतर रहा है। ये कोई मामूली नेमत नहीं है। और ये किसके बाद है? इतनी नाफरमानियों के बाद। और फिर कहा जा रहा है खाओ जो हमने पाकीज़ा चीज़ें तुमको रिस्क दी। इससे क्या पता चलता है? अच्छी चीज़ें खाना हमारे दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। वो जो चार बातें लिखी है ना, जिस्म, रूह, दिल, दिमाग, तो अगर कोई इंसान खाने में अपने लिए उम्दा चीज़ सेलेक्ट करता है तो ये कोई तकवा के ख़िलाफ़ नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग परहेज़गारी और तकवा और जोहद किस को समझते हैं? गली सड़ी ख़राब चीज़ें खाने को, या बची कुची घटिया चीज़ें, खा खा के बीमार हो। तो यहाँ पर क्या हुक्म दिया जा रहा है? कुलू, अमर शरई है, खाओ। किस में से? मिन तय्यबात, तय्यबात में से। मा रज़क़नाकुम, और तय्यबात में उसका रंग, जायका, शक्ल, इन सब चीज़ों के